0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: मेरी जिंदगी का तुझसे

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 90

Fun, entertainment, news, knowledge. 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP की दुनिया.

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप अपने खानदान को कैसा मुस्तकबिल देना चाहेंगे? फैसला अमल के साथ, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाजुन रखकर माँ बच्चे की अच्छी सेहत, बच्चों की तालीम और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखें। रोशन मुस्तकबिल की है पहचान, मतवाजन कुंबा, खुशहाल पाकिस्तान।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: करोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से गैरहाजिरी की वजह पूछे तो टालमटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम INL MNC एंड UNODC।
3: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया और प्रोग्राम जावेद जिंदगी के साथ आपका मेजबान मोहम्मद अली अजबत आपकी खिदमत में हाजिर है। लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी और खुशी के मुतलाशी है। आरजू, जस्तजू, कामयाबी, ये जो मैंने तीन आपको अहम चीजें बताई हैं, इन सब का ताल्लुक, इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं खुशी के साथ है। और बाज़ुकात इंसान खुशी हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट्स करता है, इतनी ज्यादा डेस्परेट एफर्ट्स करता है कि उसको बाज़ुकात वो एक ऐसे फेज में चला जाता है जहां वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी जिंदगी गमगीन होने लग जाती है। और ये ऑब्स्टिकल्स तो हैं, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स, ये जो बैरियर्स हैं, इनको निमटने के लिए, इनका सोल्यूशन हासिल करने के लिए हमने एक नया ट्रेंड भी शुरू किया है अपने प्रोग्राम में कि हम एक खूबसूरत सी एक बुक उठाते हैं और उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक बुक के ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन इस दफा जो हमारी किताब है जो हमने चूज की है, वो हम 40 रूल्स ऑफ लव के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके ऊपर जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शख्सियत मौजूद होंगी, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब मोहम्मद इरफान अली फानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
3: वालेकुम अस्सलाम अजीत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक।
2: बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर, मैं क्विकली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ आपकी इजाजत से। पहली तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो किताब, जो मैंने 40 रूल्स ऑफ लव जो हमने चूज की है, बड़ी खूबसूरत किताब है, इसका थोड़ा सा तारुफ करवाइए आप लिसनर्स के लिए।
3: जी अजवद, सबसे पहले तो मैं जो आपने इंट्रो दिया है इस प्रोग्राम का, कि जो भी इंसान जिंदगी में काविशें करता है, मेहनतें करता है, स्ट्रगल करता है, जुद्दोजहद करता है, उसका अल्टीमेट जो पर्पज होता है, जो अल्टीमेट आउटकम होता है, वो खुशी का हुसूल होता है। इंसान जो भी जिंदगी में करता है, आखिरकार वो उस मंजिल तक पहुंचना चाहता है जो कि खुशी की मंजिल कहलाती है। अब उस मंजिल तक पहुंचते हुए बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर उदासियां वारद हो जाती हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ तर्ज की जो उदासियां हैं, अफसुर्दगियां हैं, पेचीदगियां हैं, महरूमियां हैं, खदशे हैं, वसवसे हैं, ये चीजें इंसान को जकड़ के रखते हैं। और इनसे निपटा कैसे जाए, इनसे निकला कैसे जाए, किस तरह से एक डिप्रेस्ड शख्सियत है, किस तरीके से हम उसको उस रास्ते पे डाल सकते हैं जो उम्मीद का रास्ता है, किस तरह उस रास्ते पे डाल सकते हैं जो रोशनी का रास्ता है, किस तरह उस रास्ते पे डाल सकते हैं कि जिस तरह एक सहरा के अंदर बारिश होती है तो वहां पे गुलो गुलजार और सब्जा उगना शुरू हो जाता है, तो किस तरह वो शख्स जो महरूमियों के सहरा में मौजूद है, तो वो शख्स किस तरह से वहां पे सब्जा कैसे उगेगा। तो हम मुख्तलिफ ऐसी अच्छी अच्छी किताबें अपने सामाईन के लिए लेके आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, के जो मैसेज होता है जिन किताबों का, अगर उसको समझ लिया जाए तो जिंदगी गुजारना बहुत आसान होता है। आज की जो हमारी किताब, जैसे कि आपने उसका जिक्र किया,
2: 40
3: रूल्स ऑफ लव, उर्दू में इसको कहते हैं 40 चिराग इश्क के।
2: क्या बात,
3: के इश्क के 40 चिराग हैं ये। ये जो किताब है ये बेसिकली टर्की की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ मुसन्निफा हैं, एल्फ शफक उनका नाम है।
2: अच्छा।
3: उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तारीख के ऊपर भी उनकी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे उनका मौजू रहा है मुख्तलिफ किताबों के अंदर, वो मौजू है उनका तसव्वुफ, वो मौजू है उनका रूहानियत, वो मौजू है उनका मारफत, कि किस तरह से मारफत, रूहानियत और तसव्वुफ जो है वो इंसान की असल जो अबदी खुशी है, वो जिसका इंसान हमेशा से मुतलाशी रहा है, वो अगर उसको अमान मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी, वो इस रूहानियत के सफर पे मिलेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं इस किताब के हवाले से कि जब ये किताब पब्लिश हुई थी तो ये उर्दू के अंदर भी 2017 में इसका जो ट्रांसलेशन और तर्जुमा जो है वो मौजूद है, और टर्की के अंदर अंदर ये 8 लाख किताबें बिकी थी, टर्की के अंदर अंदर बिकती हैं, और इसका अरबी के अंदर भी फिर ट्रांसलेशन होती है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होती है, और ये बुनियादी तौर पर 2 किरदारों पर मुश्तमिल है, हजरत शम्स तबरेज और रूमी साहब। जो हजरत रूमी हैं उनके पीरो मुर्शद थे हजरत शम्स तबरेज जो थे, ठीक है। अब ये कहानी जो है ये 2 जमानों की कहानी है, ये जो नॉवल है, और इन नॉवल की कहानियां जो है ये हमें रूहानियत की तरफ हमें लेके जाती है, तरीकत की तरफ हमें लेके जाती है, और किस तरह से इंसान जितनी भी जिंदगी जिंदगी में स्ट्रगल करता है, उस स्ट्रगल के नतीजे में उसको अमान किस जगह पे मिल सकती है, ये नॉवल पढ़ के आपको समझ आती है।
2: जबरदस्त। अच्छा सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने बताया। अब मुझे आप ये बताइए कि रूहानियत, मार्फत, तसव्वुफ, ये तीन एलिमेंट आपने बताए, तो ये जो तीन एलिमेंट है ये बेसिकली है क्या, और ये किस तरह इंसान की जिंदगी को खूबसूरत और जावेदा बनाते हैं,
3: बहुत
2: इनके बारे में।
3: बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया अजवद। अजवद, एक इंसान के पास दिल है, एक इंसान के पास दिमाग है, एक इंसान की रूह है, एक इंसान का जिस्म है,
2: बेशक
3: एक मादियत है, एक तरीकत है। अब जो मादी दुनिया है, मादी दुनिया के अंदर आप खाना खाओगे तो जिंदा रहोगे।
2: अच्छा।
3: रूहानियत की दुनिया में आप भूखा रहोगे तो रूह जिंदा रहेगी। मादी दुनिया के अंदर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। रूहानियत की दुनिया में आप नींद लोगे तो आप बीमार हो जाओगे। रूह को जिंदा रखने की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, जिस्म को जिंदा रखने की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। एक होता है जहाने नफ्स, एक होता है जहाने अनफस। जहाने नफ्स जो है वो हमारी मादी जरूरियात पे बेस करता है, जिसको दिमाग ड्राइव करता है, जो जिस्म को पेन होती है इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, दिमाग मेरा जो है वो ड्राइवर होगा। लेकिन जब आप रूह के सफर पे निकलते हैं
2: वो तो बहुत
3: वहाँ पे दिल आपका ड्राइवर होता
2: प्योर है।
3: जब रूह का सफर होता है, रूह के सफर के अंदर की बीमारियां वो नहीं होती हैं जिस्म की बीमारियां हैं। रूह भी बीमार होती है, लेकिन रूह की बीमारी ये नहीं कि मुझे बुखार हो गया, रूह की बीमारी है गीबत है, रूह की बीमारी चुगली है, रूह की बीमारी कदूरत है, रूह की बीमारी बुग्ज और हसद है। ये बीमारियां रूह को लगती हैं। जो जिस्म को बीमारियां लगती हैं वो तो हम मेडिसिन से हल कर लेते हैं, लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए। जिस तरह से दुनियावी दुनिया के साइंटिस्ट होते हैं जो जिस्म की बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, इसी तरह रूह की जो दुनिया है उसके भी साइंसदान है, रूह की जो दुनिया है उसकी भी बीमारियां हैं। तो जो औलिया कराम है, जो सूफिया कराम है, जो अंबिया कराम है, ये वो लोग हैं जो आपकी रूह की बीमारियों के इलाज के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको वदियत किया है। ये जो बड़े बड़े हमें मजारात नजर आते हैं, उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर दाता दी नगरी हम इसको बोलते हैं, हमें कहीं बाबा बुल्ले शाह का मजार नजर आता है, कहीं पे हमको माधुलाल का, शम्स तबरेज और खुद रूमी साहब कितनी बड़ी शख्सियत है, और उन्होंने अपनी किताब का नाम ही दीवाने तबरेज रखा। किताब रूमी साहब की लिखी हुई है, नाम अपने मुर्शद के नाम पे वो रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो आज हम किताब डिस्कस करने जा रहे हैं 40 रूल्स ऑफ लव या 40 चिराग इश्क के, तो हम इंशाल्लाह हर एक चिराग के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हर एक दिए को डिस्कस करेंगे। वो दिया जब हम सुनेंगे तो हमारी समातों के रास्ते रूह की दुनिया में रोशनी फूटेगी,
2: रोशन हो जाएगी।
3: यस
2: बिल्कुल, जब हम सुनेंगे ये सब चीजें हमारा दिल भी रोशन होगा और हम इससे लुत्फंदोज होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिंदगी में जो इत्मीनान के एलिमेंट है, हर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी में इत्मीनान हो, उसकी जिंदगी में सुकून हो, किस तरीके से कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि हम उस रास्ते को अपनाएं और जिंदगी में इत्मीनान हासिल करें, ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक छोटी सी ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

यूरोप पहुंचकर इन्होंने बिल्कुल एक नई दुनिया देखी। यूरोप का इल्मी अंदाज फिक्र, तर्ज हयात और सनतें जिनकी बदौलत इंसान की खिदमत का काम लिया जाता था बहुत पसंद आई, लेकिन दूसरी तरफ इनकी खराबियां देखकर बड़ी बेजारी पैदा हुई। 1905 में यूरोप से वापस आए तो इस्लाम, इस्लामी अकायद और इस्लामी इत्तेहाद के पुरजोश मुबल्लिग बन चुके थे।

1908 में वतन वापसी से चंद माह कबल मुस्लिम लीग की लंदन शाख की मजलिस आमा के रुकन बने। 1926 में अलामा इकबाल 4 साल के लिए लाहौर की मुस्लिम नशिस्त से पंजाब की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। रुकन होने की हैसियत से इन्होंने कई मुफीद कवानीन मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया। 1927 में मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हिंदुस्तान के सियासी तस्फिया और दस्तूरी मसाइल पर गौर करने के लिए 1930 से 1932 तक लंदन में होने वाली 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। 1930 में आपने मंटो पार्क में 2 कौमी नजरिया पेश किया जिसको अक्सरियत ने कबूल किया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: after short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।
2: ये आवाज है

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।